0: अभी सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का, उनका भी बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी,
0: एक मेरी बहुत छोटी सी बात है कि आप इम्परफेक्ट हैं, आप भगवान ने 8 बिलियन लोग बनाए हैं, एक भी फोटोकॉपी नहीं है
1: जी।
0: एक अगर आप जो बिल्कुल बिल्कुल जुड़वा भी होते हैं ना, बिल्कुल सॉलिड वाले जुड़वा, वो भी नहीं होते
1: हैं। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है।
0: जब भगवान ने ही अलग अलग बनाए तो भाई काहे के लिए पीछे पड़े हो भाई, कैसे हम जो मां मिलेगा, कैसे एक जैसे। मैं कहता हूँ प्यार वो होता है कि आप उसको एज इट इज उसको
2: एक्सेप्ट,
0: सेलिब्रेट, नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं, नहीं नहीं उसको सेलिब्रेट करें। जो एक्सेप्टेंस है, एडजस्ट करना, ये बड़ी गलत बात है।
2: नहीं तो सेलिब्रेट से आपका क्या मतलब है?
0: सेलिब्रेट का मतलब कि आप जैसे हो, हम आपके साथ को उसको
2: उन्माद के
0: साथ, नहीं नहीं अप्रिशिएट नहीं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ को। हम जैसे कि आप पूजा करती हैं, मैं पूजा नहीं करता, एक काफी होता है, तो मैं उस चीज को सेलिब्रेट करूं कि यस यू आर, आप पूजा करते हो, कितनी अच्छी बात है। मैं नहीं कर रहा हूँ, अलग की बात
2: नहीं, बट मैं नहीं करता तो मैं कैसे समझूं कि
0: आप समझे, क्योंकि हम जो भगवान की बनाई हुई चीज है, जो आपको भी उतना ही अधिकार देता मुझे, मैं क्यों इम्पोज करूँ अपनी बात को।
2: हाँ,
0: क्यों आप जैसे कि आप सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको मिला, आपने उसको आनंद के साथ में जिया, उस पल को भले ही आपको पसंद नहीं है,
2: लेकिन तो फिर एक्सेप्टेंस ही हो गई।
0: नहीं नहीं एक्सेप्टेंस नहीं, आप यही एक क्रक्स है इस चीज का कि अगर आप इस मूड में आ जाएं कि आई एम गोइंग टू एंजॉय।
2: अंकुर जी आप क्या कहते हैं इस पर?
0: लेकिन एक काम करें, एक एडवर्टाइजमेंट सुन।
1: जी जरूर, उसके बाद बोलूंगा मैं।
3: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of the Open Radio.
4: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
5: Har Ravivar suniye Darpan Hindi Kaikram, 98.5 FM par, subah 9 se 11 baje tak.
0: तो एक तो हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे जो श्रोताओं के मैसेज आते
2: जी,
0: हैं
2: जी, मैं यही कहने वाली थी।
0: आप अगर
2: जरूर कर,
0: और तो हमारे हम वो भी हमारे जो,
2: और क्योंकि सांस वाला टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है तो कुछ बड़े अच्छे अच्छे इसके ऊपर मैसेजेस आए हैं।
0: हाँ, तो हम वहाँ से राजगर जी का एक मैसेज है, मैं वो अगर पढ़ देता हूँ।
2: हाँ जी, पढ़िए।
0: पूनम जी, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं कुटुम, तो ये June 28 संडे है, 7 AM से 10:30 AM, ये फ्री इवेंट है फॉर ऑल, और हार्वे लो पेवेलियन, डोरन ड्राइव, कासल हिल 2154। और आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो राज गर्ग जी को आप फ़ोन कर लीजिएगा 0411-766-170। और इसका जो और डिटेल है, प्लीज़ ब्रिंग योगा मैट एंड बॉटल ऑफ वाटर विद यू, तो ये अच्छा हो गया। और रजिस्ट्रेशन मास्टर, क्योंकि वो उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया, और आप आगे सुनाइएगा।
2: हाँ, तो अलका जी लिखती हैं अंकुर जी के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सो ऑल मॉम इन लॉज आर सेम, क्योंकि सास को भी अपने ढेर सारे बच्चे पैदा करते करते प्री नेटल और पोस्ट नेटल डिप्रेशन रहा होगा। तो इनका ये मानना है कि ये कारण भी हो सकता है। राजेश जी लिखते हैं कि नमस्कार जी, इट इज़ रियली नाइस टू हेयर दैट पेरी नेटल इशूज़ विच आर मोर प्रेवलेंट एंड हाउ टू मैनेज द इशूज़ मेडिकली। शैला जी लिखती हैं, सास का चरित्र विशेष व विस्तृत है, उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं।
0: ये तो
2: गजलों में श्रोताओं को नचाने का आपका यह पहला प्रयास लगता है। फिर एक मैसेज आया जिसमें वो लिखते हैं, वाह क्या बात है अंकुर जी, एक तरफ मानसिक संतुलन, दूसरी तरफ संगीत से मानसिक शांति का प्रयास। राजेश जी फिर लिखते हैं, इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर अस द 3 बेबी बोनस कॉन्सेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया विच वॉज टेकन इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। म्यूजिक इज सच अ हॉबी, वन शुड यूज ईदर यूज ऑफ एन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग विच कैन हेल्प पर्सन टू फॉरगेट हिज बैड टाइम्स। फिर आया एक मैसेज अंकुर जी के लिए कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और प्रोग्राम से होने वाली आय भी जनसंख्या के लिए समर्पित बहुत अच्छा विचार है। प्रदीप जी लिखते हैं, बहुत सुंदर आवाज़ पाई है अंकुर जी। ऋचा जी लिखती हैं, अंकुर जी का बेहतरीन इंटरव्यू और मधुर आवाज़, इंजॉइंग मधुर आवाज़ से बहुत खूबसूरत गज़ल निकली है। इतनी मधुर आवाज़ प्रदीप जी लिख रहे हैं कि लग रहा है कि जगजीत सिंह को सुन रहा हूँ। शौक जारी रखिए अंकुर जी।
6: थैंक यू सो मच।
2: तो नमस्ते रेडियो जॉकीज, इंजॉइंग रेडियो एंड टीवी साइमल्टेनियसली। माय क्वेश्चन टू द डॉक इज दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज बीन कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक लिसनिंग टू रेडियो दर्पण एवरी वीक इज डिसऑर्डर?
6: मैं जरूर, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लेंगे
2: जी,
6: जरूर से
2: बिल्कुल लेंगे।
0: तो एक और सूचना है जो म्यूजिक जस्ट फॉर इंडियन, तो ये जॉइन आशा फॉर 3 वाइब्रेंट मल्टी कल्चरल सीनियर इवेंट दिस वीक ट्यूजडे 16 जून 11 to 2 इंजॉय योगा फॉर। तो ये सीनियर के लिए है श्रोता प्रोग्राम, मैं पूरा पढ़ता हूँ कि बॉलीवुड म्यूजिक जॉइन अस फॉर इंडियन म्यूजिक एंड मॉर्निंग टी फॉर इंडियन सीनियर्स एंड पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स एज 50+ फील द रिदम सिंग अलॉन्ग इमेजिन योर सेल्फ एज ए मूवी स्टार एंड एन्जॉय द कंपनी ऑफ अदर्स। ये फरवरी तो ये इनका 2026 के काफ़ी इनके इवेंट होते हैं। तो ये श्रोताओं जो भी हमारे ग्रुप में हैं वो आप देख सकते हैं। तो एक फरवरी 18, तो उनका पूरा साल का कैलेंडर, दिस इज़ वेरी गुड पार्ट। फरवरी 18, मार्च 18, अप्रैल 15, मई 20, जून 17, जुलाई 15, अगस्त 19, सितंबर 16, अक्टूबर 21 एंड नवंबर 18।
2: और इसकी कॉस्ट केवल 5 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें ग्रुप में डालनी चाहिए क्योंकि इतना याद रखना सही
0: है। हाँ नहीं, वो ग्रुप में पड़ी हुई है
2: जी।
0: तो मैं तो केवल ये कहूँगा कि आप ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर लें 9439-5122। बस गुड, सीनियर के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। तो एक और था बस,
2: एक लीला तिवानी जी का मैसेज मैं पढ़ना चाहूंगी
0: जी, जी।
2: बढ़ती आबादी पर नहीं लगाओगे विराम, भविष्य होगा चौपट, भुगतान पड़ेगा
0: भुगतना पड़ेगा
2: अंजाम। सो लीला तिवानी जी का ये विचार है पॉपुलेशन।
0: तो इसमें
2: ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में तो ठीक होगा बट नॉट।
6: देखिए अब मैं थोड़ा इसमें कुछ अगर कह सकूं तो कंटेक्चुअली अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से जब आप बात कर रहे थे यतिन जी पुरानी, जिस समय उन्होंने 3 बच्चों का एक इंसेंटिव भी दिया था, एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कम हो रही थी और पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी ऑस्ट्रेलिया की।
0: वैसे अगर यहाँ पर लोग इम्पोर्ट ना करे जाएँ तो यहाँ पर भी
2: नेगेटिव।
6: लेकिन पिछले कुछ सालों में 10-15-20 सालों में जिस तरह से इमिग्रेशन हुआ है, जिस तरह से लोग बढ़े हैं, मेरे ख्याल से अब दे डोंट वांट टू एनकरेज द सेम थिंग।
0: यहाँ पे डायनेमिक्स थोड़े से अलग हैं डॉक्टर साहब, एंड वी हैव टू बी ओपन एंड फ्रैंक अबाउट इट। जो डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है और जिस एक वर्ग का अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो दूसरे वर्ग को बढ़ाना ही पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहा है, ये दुनिया में हो रहा है, सवाल वहां पे है। रूल हर एक के लिए होना पड़ता है, रूल एक के लिए नहीं हो सकता है। आप एक को बोलोगे कि ऐसा करो, दूसरे को पॉपुलेशन इज नॉट जस्ट कि एक आप किसी ने बच्चे दो पैदा करे, इट्स मोर देन दैट। अनफॉर्चुनेटली ये फेस कर रही है पूरी दुनिया, पूरा यूरोप तबाह हो गया है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। आप उसको बोलो कि जैसे मर्जी आपको कहना कहिए, लेकिन इससे सच्चाई को आप नहीं कर सकते। तो एनी हाउ
2: एक बात जोड़नी चाहूंगी कि जो जिस तरह का इस वक्त हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर चल रहा है कि औरतें पहले जिसे कहते हैं ना परिवार को बढ़ाने के लिए काफ़ी जिसे कहते हैं काम करती थी, या उनके बाहर के काम इतने नहीं होते थे, तो उनकी सारी अटेंशन होम बिल्डिंग पे होती थी, बच्चे पैदा करना, उन्हें बड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता। आज के डेट में मैनी विमेन फर्स्ट तो वो एजुकेशन लेती हैं, फिर जब इतनी एजुकेशन ले ली तो फिर करियर बनाती हैं, तो जो बच्चे पैदा करना बैक सीट ले लेता है, और जब तक वो सोच पाती हैं कि हम बच्चे करें तब तक उनका शरीर उनका साथ नहीं देता।
0: तो बच्चे इसलिए भी बहुत कम हो रहे हैं, ये भी सच्चाई
2: है। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में भी ये
0: हर जगह है
6: जी, हर जगह।
0: अभी लड़कियां शादी नहीं कर रही,
2: नहीं कर रही जी,
0: वो उनका उनका ये कि भाई क्यों,
2: क्योंकि एजुकेशन से अवेयरनेस आ गई है, और फिर होते हैं पर्सनालिटी क्रैश।
0: नहीं, उनको ये लगता है कि व्हाई आई नीड टू मैरी, ये प्रश्न है। आपके साथ भी ये सब होता होगा, आपके पास पेशेंट होते होंगे जो कहते हैं कि भाई क्यों मैं शादी करूं, मैं अच्छा खासा, मेरी लाइफस्टाइल है, मेरा अपार्टमेंट बड़ा है, मैं जहाँ जाऊँ, जिसको मिलूँ, जिसको घूमूं, जो भी करूँ, जो आई एम लिविंग माई लाइफ।
2: यतीन जी, नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देखें, ये सदर्न इंडिया की, साउथ इंडिया की फिल्म है, और इसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस पॉलीशेटी। तो उसमें एग्जैक्टली यही दर्शाया है कि जो लड़की है वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, बच्चा चाहती है बट शादी नहीं करना चाहती, और वो कैसे जाती है, बच्चा चाहती है पर शादी, क्योंकि माँ मरने से पहले कहती है देखो तुम मेरी एक बच्ची हो, एटलीस्ट तुमने मेरा ख्याल रखा, कल को तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो वो कहती है अच्छा मेरी माँ कह के गई है तो मैं बच्चा तो जरूर करूंगी, अब बच्चा कैसे करूंगी, तो वो स्पर्म बैंक जाती है, तो वो अपनी डिटेल्स देती है कि मुझे इस तरह का डिजाइनर बेबी चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मस्ट वॉच। श्रोताओं, आप भी अगर देखना चाहें तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो फाइनली उसका एंड ये होता है कि जिसका स्पर्म वो यूज करती है वो ही उसकी जिंदगी में आ जाता है, और फिर उसका ये रिजल्ट होता है कि वो, यहाँ ये नीच बताऊंगी, फिल्म देखे आप,
6: इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
0: तो एनी हाउ ये पॉपुलेशन वाला ये टॉपिक आ गया बीच में
2: जी।
0: मेरा
2: पर वो आपका सवाल जो था,
0: मेरा पर्पस जो ये नहीं था कि मैं पॉपुलेशन को बढ़ाऊं या घटाऊं, मैंने केवल आपने क्योंकि बोला ना छोटा परिवार है, तो मुझे थोड़ा लगा कि आपके अंदर कह सके, यहाँ से पॉपुलेशन की बात शुरू हो गई।
2: नहीं, हमने जहाँ छोड़ा था कि एक्सेप्टेंस और सेलिब्रेशन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे?
6: जी, मैं कह रहा था आइडियल वर्ल्ड में यस, इफ वी कुड सेलिब्रेट दैट विल बी ऑसम, दैट विल बी द, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उच्चतम लेवल का चीज होगा कि आप सेलिब्रेट कर सकें अपने डिफरेंसेस, कि मैं कैसे अलग हूं और मेरा पार्टनर कैसे अलग है, पर हो नहीं पाता है। तब ऐसे केस में एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आती है, फिर एक्सेप्टेंस धीरे धीरे सेलिब्रेशन में कन्वर्ट होती है। लेकिन आज के समाज में बदलाव ऐसे आ चुका है कि कॉम्प्रोमाइजेज या एक्सेप्टेंस को कमजोरी समझा जाता है, और इसलिए लोग आजकल धीरे धीरे
0: एहसान कर रहा हूँ, अपने को मैं बचा रहा हूँ, वो जो पल है उस पल को मैं जी रहा हूँ,
6: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उस पल की जो खूब, क्योंकि वो पल दोबारा मेरे जीवन में नहीं आएगा, मैं क्यों उस पल को द्वंद में बिताऊं?
6: अगर आप कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ
0: मैं
6: है
0: करता
6: ही
0: हूं। मैं डेली बेसिस पे मैं बहुत डाइवर्स लोगों से डेली मिलता हूं
6: जी
0: एंड व्हेन यू विल सी मी एंड मीट मी, जब आप देखेंगे आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट पार्ट,
6: बिल्कुल
0: कोई चाह नहीं है, कोई ये है, कोई वो है, कोई जस्ट एंजॉय दैट पार्ट,
6: बिल्कुल।
0: और मैं ऐसा करके किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने को अब ट्रस्ट में, अगर आप ये लेके जाओगे आप इसमें द्वंद में फंसोगे नहीं, आप कहोगे मैं सारा क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों उसमें एक्सेप्टेंस हो, उसमें जाऊं टॉलरेट करूं। आप कभी सोचना पुनः, आप मुझे स्वार्थी कह सकते हो रियली, ऑलमोस्ट आप लोग तो बाकी में कुछ केयर कर रहे हो, मैं तो आई एम द सेल्फिश पर्सन, यू विल फाइंड एवर, आई एम जस्ट एंजॉयिंग एवरीथिंग, आई डोंट केयर।
2: हम ये कोशिश करेंगे कि आप जैसे लोग और समाज में बढ़े, आपकी जो थिंकिंग है, क्योंकि
0: मैं सोचता हूं
2: इंसान की ये थिंकिंग नहीं हो पाती। नहीं हो पाती प्रैक्टिकली सोच। तुम्हें
0: आम इंसान नहीं हो आप ही कह रहे
2: हैं। आम इंसान हम लोग नहीं, शायद आप उस उचित स्तर पे पहुंच गए हैं, आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक चली गई है कि ये है, ये एज इट इज है, और जो मैं हूँ मैं एज इट इज हूँ, लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर। बट जो सामने वाला है अगर वो नहीं कर रहा तो तब आप क्या करें?
0: नहीं वो नहीं, वो उसकी उसका अटैक है, मैं क्यों उसमें फंसूं?
2: ठीक है, गुड। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अंकुर जी के, जो लिखा है नमस्कार रेडियो जॉकीज इंजॉइंग द प्रोग्राम साइमल्टेनियसली विद टीवी। माय क्वेश्चन इज टू द डॉग, इज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज मेन कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक लिसनिंग टू रेडियो दर्पण? ये तो उन्होंने मजाक की है क्या? तो आप ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन पे क्या कहना चाहेंगे?
6: इंफॉर्मेशन ओवरलोड या कोई भी एक चीज मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर करने के लिए काफ़ी नहीं होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 10 लोग बिठा दें कहीं पर और उनको सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रोज़ रोज़ रोज़ देते रहें तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एक मेंटल इलनेस हो जाएगी। इसका मतलब कुछ तो और है, जो फ़र्क है उन लोगों में जो शायद नहीं है उनके अंदर, इसलिए हर किसी को एक बीमारी नहीं होती है। तो एक ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि एक मानसिक बीमारी को पनपने के लिए, जैसे कि एक पेड़ को पनपने के लिए सही मात्रा में आपको सनशाइन चाहिए, हाँ। खाद चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, उसी तरह एक बीमारी को, साइकाट्रिक इलनेस को, मेंटल इलनेस को पनपने के लिए भी सही मात्रा में तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपके ब्रेन की केमिस्ट्री और आपके बॉडी की केमिस्ट्री। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका बचपन जो कैसे गुजरा और आपने कैसे इस दुनिया को समझा है आपके दिमाग ने, और क्या पर्सनालिटी आपकी शेपअप हुई है। और तीसरी चीज़ है सोशल फैक्टर्स, यानी कि आज के आपके सर्कमस्टांसेस,
2: कैसे कंडीशनिंग हुई है
6: जी आपके? आज के सर्कमस्टांसेस मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अदरवाइज फाइन थे लेकिन उनकी जॉब चली गई अचानक से, वो फाइनेंशियल क्रंच में आ गए और वो डिप्रेस हो गए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम सब की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी भी परेशानी का सबसे आसान इलाज ढूंढने की।
2: बिल्कुल,
6: पर जरूरी नहीं है कि सबसे आसान इलाज है वो सबसे सही इलाज हो।
2: सही इलाज,
6: आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, कहीं किसी चीज़ का मन नहीं करता, लोगों से मिलने का मन नहीं करता, मेरी नौकरी चली गई है, अगर वो डॉक्टर आपको दवाई देता है तो मेरे हिसाब से वो इलाज उसका नहीं है। कौन सी दवाई आपको जॉब दिला देगी या आपकी उस मानसिक स्थिति को ठीक कर देगी? क्योंकि इस वक्त आपकी परेशानी प्योरली सोशल है, आपकी जॉब, अगर कल आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा शायद।
2: बिल्कुल।
6: और सिमिलरली जब कोई डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि मुझे सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है पर अचानक से धीरे धीरे करके मैं उदासी आने लगी है मेरे अंदर, मैं सवेरे उठ नहीं पाता और सब कुछ छूट गया है, मन उदास रहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूं कि मेरे मन में सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये वो समय है जब शायद बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर प्रेडोमिनेटिंग, और इस वक्त अगर दवाई का सही इस्तेमाल किया जाए तो यहां पर ठीक होगा, उचित होगा। और तीसरा एक इंसान आता है जो सारी उम्र ही नेगेटिव रहा है, हमेशा उदासी की बात करता है, हमेशा दुनिया को नेगेटिवली देखता है, उसे लगता है सारी दुनिया उसके अगेंस्ट ही है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बचपन में ये सब कुछ देखा है, उसकी पर्सनैलिटी शेप अप ऐसी हुई है, उसको आप कितनी भी दवाई दे दें नहीं ठीक होगा, उसकी जॉब चाहे छूटे चाहे लगे वो फिर भी दुखी ही रहेगा, उसको आपको एक सही मात्रा में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जो उसकी सोच है उसमें धीरे धीरे धीरे करके बदलाव आ पाए। तो इसलिए
0: ये क्या ट्रीटमेंट होता है? जैसे
6: साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स देते हैं, और वो टेलर्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके नाम होते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, ये स्पेसिफिक थेरेपीज हैं जो स्पेसिफिक तरह की कंडीशंस या पर्सनैलिटीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मेरे, और कभी कभी हम इन तीनों का, और अक्सर ही हमें इन तीनों चीजों को मिला के चलना पड़ता है कि हमें दवाई की भी जरूरत है, हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, और हमें कुछ सिचुएशनल चीजों को ठीक करने की भी जरूरत है।
2: पेशेंट इस हालत तक क्यों पहुंचा, ये सारी चीजों का।
6: एग्जैक्टली।
0: एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए प्लीज।
7: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन।

0: श्रोताओं, कैसे लगी ये गजल? तो आज हम गजल ही बजाते हैं डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब की अभी एक और सुननी है हमने गजल, डोंट फॉरगेट दैट टाइम।

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
2: यतीन जी, ये जो सास और बहू वाला जो है ना टॉपिक, ये बड़ा हॉट है।
3: Oh my God.
2: तो उसमें लिखते हैं एक हमारे श्रोता, माँ का अम्बिलिकल कॉर्ड कभी भी खत्म नहीं होता। कहाँ गया वो मैसेज? हाँ, तो माँ का अम्बिलिकल कॉर्ड कभी भी खत्म नहीं होता। इट्स इमटीरियल इफ सन इज मैरिड और नॉट। हर लव कैन अंडरस्टैंड ओनली बाय अ मदर एंड नोबडी एल्स। फिर लीला जी लिखती हैं, अक्सर मैं साक्षात्कार लेते रहती हूँ। चीन की बहुत सी महिलाओं का कहना है कि चीन में एक ही बच्चा पैदा कर सकने का कानून है। ज़्यादा बच्चों के लिए हम ऑस्ट्रेलिया आए। राजेश जी लिखते हैं, फॉर इंफॉर्मेशन वन कैन सी ऑन SBS इनसाइट प्रोग्राम ऑन कमिंग ट्यूजडे इवनिंग एट 8:30 ऑन टू हैव चाइल्ड और नॉट टू हैव इन ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट स्पीकर्स विद द व्यूज। विवेक जी लिखते हैं, वेरी नाइस एनालिसिस अंकुर जी। टू व्हाट एक्सटेंट इज द राइज इन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ड्रिवन बाय एन एक्चुअल डिक्लाइन इन रिजिलियंस वर्सेस इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड डायग्नोसिस ऑफ द इश्यूज दैट प्रीवियसली वेंट अनरिकग्नाइज्ड।
3: एक्सलेंट क्वेश्चन।
2: फिर हेमलता जी लिखती है, नमस्ते दर्पण रेडियो एंड योर टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू। राजेश जी लिखते हैं, ब्यूटीफुल गज़ल। फिर लीला जी लिखती हैं, मानसिक संतुलन को परिभाषित करती बहुत प्यारी सार्थक गज़ल। लीला जी को भी हमारी गज़ल पसंद आई। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन के जो पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट इज़ द राइज इन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ड्रिवन बाय एन एक्चुअल डिक्लाइन इन रिजिलियंस वर्सेज इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड डायग्नोसिस of issues that previously went unrecognized।
3: बिल्कुल, और दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। दोनों ही सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ का जो प्रेवलेंस कहिए वो बढ़ गया है आज के ज़माने में। रिजिलियंस डेफिनेटली कम हो गई है,
2: कम हो गई।
3: इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिजिलियंस कम हो गई है, और उसका कोई एक कारण नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। और वो समाज का जो परिवर्तन हो रहा है वो इटसेल्फ अनफॉर्चुनेटली इज गिविंग राइज टू द रिडक्शन इन द रेजिलियंस।
4: हमारे श्रोता, हमारे दर्पण पटवार के हमारे एंकर भी हैं प्रदीप उपाध्याय जी, उनसे हम एक बात करते हैं। प्रदीप जी, रेडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद यतीन जी, और अंकुर जी का भी धन्यवाद कि इतना सुंदर कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम विचार कर रहे हैं, और साथ में संगीत का भी इतना आनंद ले रहे हैं। तो अंकुर जी, बहुत सुंदर आपने दर्पण के कार्यक्रम, दर्पण श्रोताओं का बहुत अच्छा मनोरंजन किया है। एक दो छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि ये बात तो सही है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दो विषय है, और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सबको दिखता है। किसी को जैसे चोट है या किसी को फीवर है तो सामने से दिखता है और उसको कहा जाता है कि आप अपना इलाज कराइए, आप सही नहीं है। लेकिन मानसिक समस्या थोड़ी अलग है, क्योंकि वो औरों को दिखती है लेकिन उसका कोई एक क्लियर सिम्टम नहीं होता। और
3: मैंने
5: कई बार देखा है कि मरीज जो है वो डिनायल में रहते हैं, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरा पर्सनैलिटी ऐसी है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
3: जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। और आप ऑनलाइन हैं तो मैं आपसे पहले बता देता हूँ और फिर हम जो बात कर रहे थे वो मैं आगे कंप्लीट करूँगा
2: जी।
3: तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये मैं अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स से अक्सर डिस्कस करता हूँ कि अगर किसी को चोट लगी है, पैर में फ्रैक्चर है, तो सारे घर के लोग उसको ये बोलेंगे कि देखो आराम करना है, जब आप की जो फ्रैक्चर का जो कास्ट है, प्लास्टर लगा हुआ है, जब वो निकलेगा तो आपको धीरे धीरे चलना है, क्रचेज लेके चलना है, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, और कुछ महीने में धीरे धीरे जब आप ठीक हो जाएंगे तभी आप चले या भागेंगे। कितना क्लियर है, हम सबको इस बात का पता है कि यही बोलना है जब आप किसी से मिलें जिसके पैर में फ्रैक्चर है। लेकिन जब किसी को डिप्रेशन होता है तो हम उससे बोलते हैं, दैट्स ओके, गेट ओवर इट, यू कैन डू इट।
2: कोई ठोस बात नहीं बताते।
3: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हम सब मानसिक बीमारियों को एक बीमारी की तरह नहीं देखते, उस तरह नहीं देखते जिस तरह हम टीबी, निमोनिया, फ्रैक्चर को देखते हैं, उस तरह से हम मेंटल हेल्थ को नहीं देखते. हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं कि वो आपके कैरेक्टर की वीकनेस है, वो एक बीमारी नहीं है.
2: बन गया
3: जी. और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग खुद बताने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो घर के लोग समझेंगे नहीं कि ये क्या परेशानी है. बोलेंगे क्या तुम फालतू की लेके बात लेके बैठे हो, क्यों इस बात को तुमने मन में लगा लिया और तुमने खाना पीना छोड़ दिया और 3 महीने से तुम काम पे भी नहीं जा रहे हो. Rather than understanding कि what exactly could be the problem, which is depression, most likely.
2: और उसका आगे क्या कारण क्या है?
3: जी.
2: उनके पास जॉब नहीं.
3: Exactly.
2: है. तो सारे लोग अगर मिल के उसमें मदद करें जो मूल कारण है.
3: जी.
2: पर ऐसा नहीं
3: तो ये जो टैबू आपने वर्ड यूज किया बिल्कुल सही बात है. या स्टिग्मा कि लोग मानसिक बीमारियों को बीमारी नहीं समझते, कैरेक्टर की वीकनेस समझते
2: हैं. वो ये कहते हैं कि ओह मैं पागल हो गए.
3: जी.
2: और पागल होना तो बहुत खराब है. तो जी. वो एक वेग सा जो है आइडिया. हाँ.
3: और अनफॉर्चुनेटली आप कोई ब्लड टेस्ट करा के डिप्रेशन डायग्नोज
2: नहीं
3: कर सकते, है ना, एंग्जायटी भी नहीं डायग्नोज कर सकते.
2: True.
3: तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, वो है अवेयरनेस. इस बात को लोगों तक पहुंचाना कि एक तो हर चीज मेंटल इलनेस नहीं होती. स्ट्रेस किसी बात का लेना मेंटल इलनेस नहीं है, लेकिन हर चीज स्ट्रेस भी नहीं होता है. कुछ चीजें मेंटल इलनेस होती हैं जिसका ट्रीटमेंट चाहिए. उसी लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उसी के लिए आपको.
2: मेरे ख्याल से आप यही करते हैं, पेशेंट के साथ बैठ के पूरी उसे सुनते हैं पहले
3: जी.
2: क्योंकि सुनने वाला भी कोई नहीं है.
3: आप एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 5 या 10 मिनट बात करेंगे
2: जी.
3: आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपसे पहले कम से कम 1 घंटा आपकी स्टोरी समझेगा और जानने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है.
2: पेशेंट हियरिंग है ना.
3: एग्जैक्टली.
2: वो नहीं है.
3: लिसनिंग इज वेरी
2: इंपॉर्टेंट. लोगों के पास इतना वक्त Absolutely. नहीं है.
3: एब्सोल्युटली.
6: तो आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो
5: नहीं ये बहुत अच्छा इसमें बताया और ये एक अच्छा विषय है जिसमें मेरे ख्याल से जो स्वस्थ लोग हैं उन लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो उसको कैसे डील करना है. और दूसरा मेरा एक सवाल था, यही अंतिम सवाल होगा, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अब जैसे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूलिंग में है या सेकेंडरी स्कूलिंग में है, या यंग किड्स हैं जो कि अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो इस तरीके की समस्याओं का शिकार ना हो उनका स्वास्थ्य. अब जैसे फ्रैक्चर का आपने बड़ा एग्जाम्पल दिया, तो हम जैसे चाहते हैं बच्चे को कि भाई अच्छा जूता पहनो, फिसलन उसमें ना हो, उसका सोल अच्छा हो, ताकि आपके फिसल के गिरने की और फ्रैक्चर होने की संभावना कम से कम हो. तो इसी तरीके की प्रिकॉशन मेरे ख्याल से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी होनी चाहिए कि बच्चे को, जो छोटा बच्चा है जो अभी स्कूलिंग शुरू की है जिसने, या सेकेंडरी स्कूलिंग में है, तो उसको एज ए पेरेंट या एज ए फ्रेंड इवन उसको किस तरीके से हमको करना चाहिए ताकि इस तरीके की संभावना में पड़ने की संभावना कम से कम हो जाए. इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए.
3: देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यही तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जिस पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो कई गुना बेटर होगा देन ट्रीटिंग मेंटल इलनेस एज इट. सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. और जस्ट कुछ सेकेंड्स लेना चाहूंगा कि मेरा जो काम है वो मुझे फैसिनेट इसीलिए करता है क्योंकि मैं प्रिवेंशन से भी एक स्टेप पहले का काम करता हूं. मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक मदर को मेंटल इलनेस होती है और बच्चा उसके पेट में होता है, उस पे उस मेंटल इलनेस का असर वहीं से शुरू हो जाता है.
2: सही कहा.
3: मां के पेट से.
2: बिल्कुल.
3: और जब वो बच्चा पैदा होता है और उसकी मां उसका देखरेख नहीं कर पाती अपने मानसिक स्वास्थ्य की वजह से, तो वो बच्चा ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका होता है कि जब मैं 20 साल का होऊंगा तो मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी होगा. तो अगर हम उस मां के मानसिक स्वास्थ्य पे काम करें जो अभी प्रेग्नेंट है या होने वाली है, तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को ऑलरेडी मानसिक स्वास्थ्य दे रहे हैं और मानसिक इलनेस, मानसिक परेशानी से बता रहे हैं. तो एक तो ये काम जो मैं कर रहा हूं, जो मेरा काम है, जो कि इसीलिए मैं बहुत आई फील रियली प्राउड ऑफ डूइंग दिस जॉब, ट्रीटिंग मेंटल इलनेस इन मदर्स. दूसरा आपने कहा, बिल्कुल, ये जो सेकेंडरी स्कूल कि हम बात कर रहे हैं ना, हमें उससे भी पीछे आने की जरूरत है, हमें बचपन में आने की जरूरत है. माँ बाप जो बच्चे को देते हैं वो उनके साथ सारी उम्र रहता है. जो हमने रेजिलियंस की बात कर रहे थे, वो रेजिलियंस भी माँ बाप से ही आती है.
2: बिल्कुल.
3: वो माँ बाप का होना, वो माँ बाप का समझना, वो माँ बाप का समझाना कि बेटा अगर ये चीज तुम्हें अभी नहीं मिल सकती तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ. There are alternatives and everything. It starts from a toffee. It starts from a lolly. It starts from a biscuit. हम अगर एक 18 साल के बच्चे को यही बात समझाने की कोशिश करेंगे पहली बार, वो नहीं समझेगा, वो आपसे दूर चला जाएगा क्योंकि उसे लगेगा आप समझ नहीं रहे उसकी बात. पर यही अगर आप एक 5 साल के बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे जिसकी आप दुनिया हैं, उस पे इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी नींव जो है वो रेजिलिएंट होती है, फाउंडेशन अच्छी होती है, इसलिए वो आगे जाके जीवन की जो भी तकलीफें हैं उनको.
2: यहाँ पर अंकुर जी के हमारे अगर हम कुछ 25-30 साल पीछे चले जाएं तो हमारे यहाँ जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो हवन रखा जाता है जिसे कहते हैं उपनयन संस्कार दिए जाते हैं. तो माँ को अच्छा टेक्स्ट पढ़े, उसके आसपास अच्छे फोटोज लगाए जाते थे कृष्ण भगवान के, तो कि ऐसा बच्चा पैदा तो उन और जहाँ वो काम कर रही है. अब अगर आज की डेट में हम देखें एक माँ सिल्वर वाटर जेल में काम कर रही है
3: जी.
2: तो कितना ही अपने आप को बचा लेगी, वो सारी चीज़ों का जो उसका माहौल है उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से कंडीशनिंग माँ की सबसे, जहाँ से वो बच्चा आ रहा है वो 9 महीने कैसी रही, खुश रही, उदास रही या क्या हो गया उसके साथ, आई थिंक वो जो नींव पड़ जाए.
6: एक फिल्म आई थी ट्विंस करके, बॉलीवुड की नहीं हॉलीवुड की मूवी है ट्विंस, तो उसमें दो लड़के हैं तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, एक माँ होती है उसके 5 फादर को स्पर्म बना के एक अच्छा
2: जी
6: उससे समाव दो पैदा हो जाते हैं.
2: अच्छा
6: तो दूसरा वाला जो उसको जैसे कूड़ा इस तरीके से, तो वो हुए तो दो बच्चे. तो जब वो आपस में मिलते हैं दोनों, तो एक को जो है ना वो बिल्कुल अच्छे उसमें लेके जाते हैं बीच में, अच्छी अच्छी पढ़ाई सब कुछ, ही वाज लाइक अ टॉप क्लास जीनियस ऑफ एनीथिंग, ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. जो दूसरा वाला है वो चोरी चकारी ये सब.
2: हाँ, तो ये तो बॉलीवुड की कहानियां कितनी बन चुकी हैं इस पे.
6: नहीं मेरी बात सुने, तो आखिर में जब दोनों मिलते हैं तो वो कहता है कि यू नो यू आर गुड, ये उनको मालूम पड़ जाता है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था, यू आर गुड जीन्स यू नो एंड आम कचरा आम यू नो करके कहता कि नहीं जो इंटेलिजेंट है जो कहता
2: सही है
6: मुझे अच्छा एनवायरनमेंट मिला है जिसकी वजह से
2: कंडीशनिंग मेरी अच्छी.
6: अगर आपको भी वो मिलती तो आप भी वैसे ही होते.
2: सही
6: तो ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है. प्रदीप जी हो सकता है कि आपके आंसर का थोड़ा बहुत जवाब मिला हो.
5: बिल्कुल सही जवाब मिला है. और ये जो आपने जो लास्ट में जो एक नया जो स्ट्रिंग आपने ऐड की कि ये कैसी अपब्रिंगिंग होती है उसके हिसाब से, इसमें भी एक्चुअली एक चर्चा की जा सकती है कि जैसे दो बच्चे बॉर्न होते हैं, ट्विंस ही बॉर्न है या जो आगे पीछे के 1-2 साल का फर्क है, और जब वो 5-6 साल के जब होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में हम बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखते हैं.
6: yes.
5: एक को जैसे जल्दी गुस्सा आता है, एक बड़ा कूल होता है, इस तरीके के कई उदाहरण हो सकते हैं. तो इससे एक चीज ये होती है कि ठीक है हमारी अपब्रिंगिंग तो दोनों के लिए सेम थी, लेकिन फिर इतने दोनों फर्क क्यों है. तो ये एक मेरे ख्याल से थोड़ा आध्यात्म की ओर ले जाता है. क्या जो हम बॉर्न होते हैं अपने उसको चाहे डीएनए कह ले साइंटिफिक लैंग्वेज में, या पूर्व कर्मों का प्रभाव या पूर्व जन्मों का प्रारब्ध कह ले उसको लेकर पैदा होते हैं, इस पर एक अलग चर्चा की जा सकती है. और मेरे ख्याल से विज्ञान इस पर भी विचार कर रहा है. लेकिन हाँ मैं आज्ञा चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और मेरी जो भ्रांतियां थी उनको दूर किया, और आज के श्रोता निश्चय ही आज लाभान्वित हो गए.
3: थैंक यू सो मच.
5: थैंक यू वेरी मच.
3: थैंक यू.
6: तो ये जो है ना एक ऐसा है सिलसिला, लेकिन एक चाहेंगे डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हम आप थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद में हम चाहेंगे कि आप एक टिप्स दीजिए छोटी मोटी.
2: ये गीत भी सुनना है और
6: तो अभी ऐसे है ना कि कैरियोकी नहीं बजाते क्योंकि कैरियोकी से गड़बड़ हो रहा था
3: जी.
6: आप वैसे ही सुनाइए.
3: अच्छा
6: ठीक है ना
3: जी.
6: क्योंकि हाँ चलिए
3: जी. ये मेरे ख्याल से ये जो मैं गीत गुनगुनाऊंगा, 2 शब्द गुनगुनाऊंगा, ये जीवन का सार है. बहुत ही सिंपल शब्दों में कवि ने ये गाना लिखा, और पर अगर समझना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डीप मीनिंग है इसकी।

0: बहुत ही सुंदर,
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: थैंक यू, थैंक यू।
1: ये जीवन है बस,
0: सच में
1: यही तो। एक बस
0: एक मैसेज और आया जी,
1: जी
0: इनकरेज अंकुर प्लीज, ही इज अ ग्रेट पर्सन एंड अ ग्रेट सिंगर टू अलोंग विद अ ग्रेट साइकियाट्रिस्ट। अंकुर जी नीड्स टू बी सपोर्टेड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग हिम टू अस। ये आपके लिए,
2: थैंक यू, थैंक यू।
0: टुडेज प्रोग्राम इज रियली गुड,
1: थैंक यू।

0: जिंदगी धूप और तुम घना साया, अगर ये ऐसा प्यार मिल जाता है तो फिर बात ही अलग है।
1: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
2: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है, इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
0: श्रोताओ, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। आप सोच रहे होंगे ये मैं मिक्स क्यों कर रहा था, इसके मैं वजह आपको बता देता हूँ, क्योंकि समय कम हो रहा है और गज़ल भी सुनने का मन कर रहा है, ऐड भी बजाना है और हमें कई बातें करनी भी हैं, तो इसलिए थोड़ा मैंने ये करा। तो डॉक्टर साहब, कई चीज़ों का एक है, एक तो सोशल मीडिया का, AI का, लोग AI पे अपने दोस्त, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ बना रहे हैं, ये जो
3: साइकोलॉजी है, हाँ,
0: इसको आप कैसे चैलेंज करेंगे? और थोड़ी हमारे श्रोताओं को टिप्स बताइए, अब समय कम रह गया है
4: जी,
0: और
4: जी,
0: संगीत कैसे इसमें हेल्प कर सकता है?
4: जी बिल्कुल।
0: अब आप
4: देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो हमेशा वो चीज़ें ढूंढता है जो हमको वैलिडेट करें। अगर आपको वैलिडेशन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं मिल रहा है तो आप उसको और जगहों पे ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, AI पे ढूंढते हैं। AI इज़ वेरी क्लेवर, और वो आपको वो वैलिडेशन देता है जो आप अपने पार्टनर से, भाई से, पापा से, मम्मी से चाहते हैं, तो इसीलिए
0: वो मिलता नहीं
4: है, इसीलिए वो आपको AI से मिल रहा है और लोग जो हैं उनसे प्यार कर बैठ रहे हैं, उनसे रिलेशनशिप बना बैठ रहे हैं, लेकिन इट्स अ वर्चुअल थिंग। सो इट्स अ मेनेस। एक्चुअली AI इज नॉट अ मेनेस, बट दिस फेनोमेना जहां पर लोग ये जो इस तरह से रिलेशनशिप बना रहे हैं, दैट इज अ मेनेस। वो आगे के
3: ये सोसाइटी की जो वीकनेस है उसको झलकाता है,
4: फ्रेजिलिटी को बताता है कि कितना फ्रेजाइल है।
3: आपस में बात करना, अच्छे दोस्त होना, परिवार में खुल के बोलना, ये सब खत्म होता जा रहा है
4: जी।
3: और आप अपने कंप्यूटर से बातें कर रहे हैं, AI से बातें कर रहे हैं, और वहां से आपको खुशी मिल रही है। अब आप उसी को रियल समझ बैठते हैं और यहाँ से एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाए।
4: और AI से पीछे जाएं तो सोशल मीडिया, फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, हमारी लाइफ में अच्छी फीलिंग्स तभी रहती हैं जब मैंने फेसबुक पे कुछ डाला और उसमें 150 लाइक।
0: अब आप ये बताइए, अब हमारे पास समय बहुत कम है
4: जी,
0: कि क्या करें?
4: सबसे पहली चीज जो कमी हो गई है वो है कि अपने सोशल दायरे को बढ़ाएं, सोशल मीडिया पे नहीं, आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया,
3: फेस टू फेस,
4: एक्चुअल वर्ल्ड में, फेस टू फेस आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, दोस्तों को फोन कीजिए, दोस्तों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, मुखातिब होइए, उनसे सामने मिलिए, रूबरू होइए, रादर देन कि उनसे व्हाट्सएप पे और उनसे फोन पे, चाय पे जाइए, कॉफी पे जाइए, बिल्कुल बिल्कुल मिलिए।
0: ये हो गया कि जितना हम मिलें एक दूसरे से,
4: बिल्कुल।
0: दूसरा,
4: एक साइकाट्रिस्ट होने के नाते मुझे ये बात बोलनी ही पड़ेगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई है जहां पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं और आप नेगेटिव चीजों में धसे जा रहे हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और समय हो चुका है काफी, तो सीक हेल्प इज वेरी
0: इंपॉर्टेंट।
4: यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड और यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, बट सीक हेल्प। और एक प्रोफेशनल आपको बता सकता है कि शायद आपको जरूरत नहीं है किसी दवाई की, आप बस केवल अपने आप को दोस्तों से मिलाइए और आप कुछ पॉजिटिव चीजें करिए, अध्यात्म से जुड़िए, योग से जुड़िए, पॉजिटिव फिजिकल हेल्थ से जुड़िए, और वो आपकी हेल्प करेगी, दैट मे बी इनफ। और अगर नहीं तो ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आपको दवाई और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो
3: हेल्प में ये सारी चीजें
4: जी जी। तो ये सबसे बड़ी टिप मेरे ख्याल से मैं देना चाहूंगा, अपना वक्त जो है वो स्क्रीन को कम देना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम करें। ये मैं कह रहा हूं और कहते वक्त मुझे खुद मन में अंदर चुभन हो रही है कि ये मुझे खुद से शुरू करना पड़ेगा, सबसे पहले सोने से पहले, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुबह उठने के बाद और सोने से पहले
3: सुबह
4: स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए,
3: उठते ही स्क्रीन पे ना जाए और रात को सोने से आधा घंटा पहले सब
4: बिल्कुल बिल्कुल बिस्तर, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर पे कंप्यूटर, और मैं अपनी कल रात की ही चीज सोच रहा हूँ जब कंप्यूटर मेरे पास था जब मैं सोने जा रहा था। तो पर सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी लाती हैं, क्योंकि आप कुछ अचानक से पढ़ते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है और सब कुछ सही चल रहा है जीवन में, उसके बाद भी वो आपने मैसेज पढ़ लिया व्हाट्सएप पे या न्यूज में कोई चीज रात के सोने से जस्ट पहले, और आप उसकी वजह से आपका मन खराब हो गया,
3: सारे सपने वैसे आएंगे, आप सुबह बड़े ग्रंपी होके उठेंगे,
4: एग्जैक्टली
3: आपका दिल नहीं करेगा कुछ करने का। और हमारे परिवारों में जो ये प्रथा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले भजन लग जाते हैं, तो आपका जिसे कहते हैं ना वही कंडीशनिंग, आपका एनवायरनमेंट अगर शांत और अच्छा है दिन अच्छा निकलता
4: है। मेरे घर का एक रूल है जो मेरी वाइफ ने बनाया है, और वो ये है कि पहला गाना सुबह का भजन
3: ही होगा। सही बात,
4: तो वो बच्चे भी उसमें ढल चुके हैं, उन्हें पता है कि पहला गाना भजन बजेगा।
3: हमने भी बचपन से ऐसे ही देखा है।
4: तो दैट गिव्स पॉजिटिविटी।
5: पूरा सेंट्रलाइज आपका रेडियो है पूरे घर में, वो है कैसे?
4: पूरे घर में है, पर हमें पता है कि वो कहाँ बैठने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सवेरे नहीं लगाते गाने वगैरह कुछ, क्योंकि सवेरे जल्दी होती है स्कूल जाने की ऑफिस जाने की, पर जब बच्चे कार में बैठते हैं तब उनका पहली फरमाइश आती है कि गाना लगेगा, तो वो भजन होता है। वो भजन होगा पहला और उसके बाद ही फिर कोई गाने लगेंगे।
3: ये विवेक जी ने एक मैसेज भेजा है, सो ट्रू, पेरेंट्स शेप एवरीथिंग बट प्रेजेंस अलोन इजंट इनफ, इट्स द लेसन वी बिल्ड इन टीचिंग किड्स दैट रिवॉर्ड्स आर अर्नड नॉट गिवन।
4: Exactly.
3: I have seen it often, a child with an honest parent and a limited means gets a stronger upbringing than one with wealthy parents and endless time and resources but poor values. So absolutely. Value system ko,
4: absolutely.
3: belief system ko
4: absolutely.
3: strong karna hai.
4: Value system bahut important cheez hai.
3: Aur ant mein Leela ji likhti hain, Ankur ji se vartalaap bahut rochak aur sarthak lag raha hai. Geet karyakram mein char nahi hazar chand laga rahe hain. लीला दीवान,
4: थैंक यू। और अब मुझे पता है इस वक्त हमारा खत्म हो रहा है, तो हम आपने आखिरी जो सेगमेंट पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, वो था म्यूजिक और मेंटल हेल्थ। तो देखिए अगेन इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं म्यूजिक और मेंटल हेल्थ पर, पर कुछ शब्दों में कहूं तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में ऐसा कोई ना कल्चर है ना था जिसमें म्यूजिक नहीं था। म्यूजिक हैज बीन देयर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूजिक हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। इट इज द ओनली एक्सरसाइज, ओनली एक्टिविटी विच एक्टिवेट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ इट। आज उसका ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है लोगों की, बूढ़े लोगों की जिनको डिमेंशिया है, जिनकी मेमोरी जा रही है, उनके लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए भी म्यूजिक का इस्तेमाल हो रहा है।
5: तो आपने तीन समाधान बोले, म्यूजिक का भी बहुत अच्छा उसमें
3: बहुत
5: योगदान
3: अच्छा
5: हो गया
3: योगदान।
5: लेकिन श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, हेल्प की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन मेरा एक है कि घर से बाहर निकलिए,
4: बिल्कुल
5: अपने कंफर्ट नेचर से
4: जुड़िए,
3: नेचर से,
5: कंफर्ट जोन से निकलिए, जो भी है जाइए किसी को यू नो। और अगर आपको अंदर कुछ गिल्ट जैसे चल रहा है तो वो उसको भी आप संभाला जा सकता है, ये ऐसे मैं मानता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है,
3: समय हमेशा ही कम पड़
5: जाता है। जो हमें समय दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लोगों का जीवन होगा।
3: थैंक यू।
5: हमारे कोई नए श्रोता है जो उन्होंने मुझे मैसेज लिखा है, उन्होंने लिखा है हैप्पी टू बी ऑन रेडियो फॉर सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ इफ यू हैव टाइम। थैंक यू। आपने अपना नाम नहीं लिखा है, वरना मैं आपका नाम भी लेता। लेकिन आज पूनम जी
4: थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बात करने के लिए। और
3: बात करके मेरे ख्याल कई लोगों की भ्रांतियाँ या ऐसी बातें जो वो किसी से पूछ नहीं सकते थे, आज उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे जरूर। थैंक यू,
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
6: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
7: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में, ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।